नमः। श्री दीप नारायण भगवान की, श्री सुदेव पुरुषा महादेव की, हिमालयन अवतार श्री अलक पुरुषा महादेव की, हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी माधवानंद पुरी जी भगवान की, विश्वगुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य परम योगिराज परमहंस स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी गुरुदेव भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद भगवान परमात्मा के युगल चरणों में प्रणाम। परम पवित्र उस दिव्य महान परंपरा ओम श्री अलकपुर जी सिद्धपीठ परंपरा के सभी महान ऋषियों को प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में वंदन करते हुए मंचस्थ महामंडलेश्वर श्री स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज और इस परम पवित्र परम दिव्य आयोजन में जिसके निमित्त आयोजन है ऐसे हम सब के आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी के उस दिव्य कृपा से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और सत्संग का दिव्य लाभ ले रहे हैं। इस सत्संग सभा में, इस सत्संग त्रिवेणी में, इस सत्संग की बहती गंगा में विराजमान समस्त श्रद्धामयी मातृशक्ति, धर्मानुरागी भक्तजन जो अपने अपने घर गांव परिवार को छोड़ करके इस अमूल्य दुर्लभ सत्संग का लाभ लेने आए हैं, घर भी बैठ सकते थे लेकिन परमात्मा की कृपा से आपके हमारे मन में प्रेरणा हुई कि हम भी सत्संग श्रवण करें, तो परमात्मा की परम कृपा से यह ऐसा अवसर आता है। कहते हैं शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में कहा, भाग

भाई, जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पश्चात ऐसा समय आता है जब हमको सत्संग प्राप्त होता है। कब होता है? जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं,

युगांतर के पुण्य एक साथ आते हैं, तब जाकर के हमें ये सत्संग प्राप्त होता है। और सत्संग भी ऐसे परम पवित्र उस दिव्य धाम में, जो समस्त वेदों का मूल, शास्त्रों का मूल, उपनिषदों का मूल ओमकार है, उस ओमकार की रचना करने वाले परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में प्राप्त हो तो इसकी महिमा और अनंत गुना बढ़ जाती है। तो आप हम सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं, परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में इस दिव्य सत्संग का लाभ ले रहे हैं। सज्जनों, परमात्मा ने हमको जो यह मनुष्य जीवन दिया है, इस मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? खाना पीना, सो जाना, परिवार बढ़ाना, क्या यही उद्देश्य? नहीं, ये तो ठीक है। संसार में जिस प्रकार से हम रहते हैं उसी प्रकार से पशु भी रहते हैं, पशुओं का भी परिवार होता है, वह भी परिवार को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। अरे देखो, बिल्ली को देखा है ना, बिल्ली मौसी अपने बच्चे को सात घरों में ले जाती है, कितना पालन करती है, घर नहीं होता है, तो वो भी बच्चों का पालन करती है। और हम यदि अहंकार करने लग जाए कि बच्चों को पाल पोस करके हमने कोई बड़ा काम कर दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है, शक्ति दी है, हम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक उद्देश्य यही है कि संत चरणों में आकर के हमें क्या करना चाहिए? भगवान का भजन, भक्ति, उपासना, साधना, घर परिवार छोड़ करके नहीं, परंतु घर परिवार में रह करके ही करना चाहिए। तो परमात्मा की कृपा से ऐसे महापुरुष जिनकी हम आज 62वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, ऐसे महापुरुषों के चरणों में बार बार वंदन करते हुए हम सबका जीवन भी उस दिव्य परम ज्योति की तरह उज्ज्वल हो, प्रदीपित हो, और हमारे जीवन में भी वह प्रकाश आए गुरुदेव की कृपा से, कि हम भी आनंद से परिपूर्ण हो जाए। देखो, गुरुदेव भगवान की कृपा से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है, बिना गुरु कृपा से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। एक अज्ञानी मनुष्य था, वह न तो महात्मा को मानता था, न भगवान को मानता था, न संत को मानता था, किसी को नहीं मानता था। एक बार संत महाराज उस गांव में पधारे, और जा कर के संत जब आते हैं क्या करते हैं? संत आकर के भगवान से मिलाने का ही कार्य करते हैं। संत हमें परमात्मा को प्राप्त करने का जो मार्ग होता है उस मार्ग को दिखलाते हैं। तो संत जी ने उस अज्ञानी व्यक्ति से जा कर के पूछा कि भैया, मैं तुमको कैसा दिखता हूँ? अब उसे न संतों से मतलब था, ना किसी से मतलब था। उसने कहा, महाराज आप तो हमारे जो गांव में बूढ़ा पाड़ा है ना, वैसे दिखते हो बिल्कुल। संत ने कहा, अभी इसका अंतकरण शुद्ध नहीं हुआ है, पवित्र नहीं हुआ है, बिल्कुल मलिन है। संत ने कहा, कोई बात नहीं, जैसा दिखता हूँ ठीक है, लेकिन तुम यह करो, मैं जो तुमको मंत्र दे रहा हूँ, भगवान का नाम स्मरण करने के लिए दे रहा हूँ, यह नाम स्मरण करते रहना। फिर संत जी एक साल बाद आए और पूछा, भाई अब कैसा दिखता हूँ? बोले, महाराज अब थोड़े मनुष्य जैसे दिखने लगे हो। संत जी ने कहा, ठीक है, जो मंत्र दिया है उसको निरंतर जप करते रहना, छोड़ना मत एक दिन भी, मैं तीर्थ यात्रा करके वापस आता हूँ। कुछ समय बाद संत जी महाराज गंगा, हरिद्वार, काशी स्नान इत्यादि करके आए, और फिर उसको पूछा कि भाई अब कैसा दिखता हूँ? महाराज अब आप देवता जैसे दिखते हो। महाराज जी ने कहा, अब कुछ और जो है इसको अंतकरण पवित्र हो जाए तो आनंद आ जाएगा। एक बार और गए और जा कर के फिर वापस आए, तब उस मनुष्य ने आकर के क्या किया, सीधा दौड़ करके आया जैसे गुरुजी आए, और आकर के दंडवत प्रणाम किया, बोले प्रभु आज तो साक्षात मुझे भगवान ही दिखते हो। तो महाराज वो अज्ञानी मनुष्य से ज्ञान कराने वाले कौन हैं? परमात्मा ही हैं। परमात्मा ही हमें ज्ञान रूपी प्रकाश दे करके अज्ञान रूपी अंधकार से दूर करते हैं, ताकि हम ज्ञान के प्रकाश में आकर के आलोकित हो जाए, आनंदित हो जाए, प्रसन्नचित हो जाए, और हमारा भी कल्याण हो। इसीलिए संत महापुरुष इस धरती पर आते हैं। देखो, सुखिया भाई बड़ा सुंदर भजन गा रही थी, और भजन गाने के बाद में दो सुंदर बातें कही इन्होंने। कहा, जो दो अवतार होते हैं भगवान आते हैं ना संसार में, तो किस रूप में आते हैं? एक तो भगवान का नित्य अवतार होता है, एक निमित्त अवतार होता है। तो नित्य अवतार अर्थात हमेशा भगवान धरती पर रहते ही है। तो अब हमें क्यों नहीं दिखते महाराज? रहते हैं तो, क्योंकि हमारी वह दृष्टि नहीं है।
भगवान कृष्ण कहते हैं ददामि तम, जो अर्जुन है उसको भी भगवान कृष्ण भगवान के रूप में नहीं दिखते हैं, तो दिव्य चक्षु जब देते हैं तब भगवान का विराट रूप दिखता है। तो एक तो नित्य अवतार के रूप में, दूसरे निमित्त अवतार के रूप में। तो निमित्त कब आते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब क्या होता हूँ, मैं अवतार लेता हूँ। तो उस समय भगवान किसी न किसी कारण से अवतार लेकर के आते हैं, पूर्ण रूप में आते हैं, वो हो गया निमित्त अवतार। और नित्य अवतार का महाराज, जैसे हमारी परंपरा के दिव्य महान ऋषि अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वैदिक धर्माचार्य श्री दीपनारायण महाप्रभु जी, ऐसे महापुरुषों के रूप में भगवान नित्य इस धरती पर निवास करते हैं। और आज भी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य सद्गुरुदेव भगवान विश्वगुरु जी के रूप में हमारे मध्य में साक्षात भगवान ही विराजमान है। बस हमको देखने की कमी है कि हमारी दृष्टि कैसी है, हमारा विश्वास कैसा है, हमारी श्रद्धा कैसी है। तो दो रूप में आते हैं, तो उसी रूप में संत जो भगवान के नित्य अवतार होते हैं। और महाराज संत भगवंत अंतर नहीं निरंतर, संत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, अंतर नहीं करना चाहिए। जो अंतर करता है उसको वह फल प्राप्त नहीं होता है। जैसे कल्पवृक्ष देखा आप लोगों ने, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से यहाँ कल्पवृक्ष लगा हुआ है ना। तो एक व्यक्ति था अपना, उसके साथ में पुराने समय की बात है, सामान लेकर के जा रहा था। तो इसकी सवारी थी, घोड़ा था, और घोड़े के ऊपर सामान लदा हुआ था, लेकर के जा रहा था। जाते जाते रास्ते में बहुत थक गया महाराज, थक गया तो उसने सोचा एक पेड़ है, पेड़ के नीचे जा कर के आराम कर लिया जाए। आराम करने के लिए गया और सोचने लगा, थक गया हूँ, थकने के साथ साथ भूख भी लगी है, यदि बढ़िया से भगवान की कृपा से भोजन मिल जाए तो महाराज क्या ही बात है। अब कल्पवृक्ष के नीचे बैठा था, जैसी कल्पना की तुरंत कल्पना साकार हो गई और उसके सामने पंच पकवान आ करके रख दिए गए और तुरंत प्रसन्न हो गया और भोजन पा लिया। भोजन पाया तो महाराज अब भोजन के बाद क्या होता है, निद्रा आती कि नहीं आती। महाराज भोजन कर लिया, अब सोना है, आराम करना है। अब उसका मन हुआ आराम तो कर ले, लेकिन आराम करने के लिए कंकड़ है नीचे, कोई बढ़िया से खाट मिल जाए, हैं मखमल का गद्दा वगैरह, तो आनंद आ जाए। जैसी कल्पना की तुरंत बढ़िया जो है बेड आ गया, उस पर मखमल का बिस्तर आ गया और सो गया। सोने के पश्चात नींद आ ही रही थी, क्या थोड़ा पैर दर्द हो रहे हैं, कोई पैर दबाने वाला आ जाए तो बड़ा सुंदर हो जाएगा। और जैसे कल्पना की सुंदर अप्सराएं आ गई पैर दबाने के लिए, सेवा करने के लिए, और उसको नींद आ गई। अब नींद आ गई, थोड़ी देर बाद वापस नींद खुली, कहा महाराज अचानक इस जंगल में मैं सो रहा हूँ, अकेला हूँ, सामान रखा हुआ है, शेर आ गया और मुझे खा गया तो क्या होगा। जैसी कल्पना की महाराज शेर आया और उसने शिकार कर लिया। बोले दीपनारायण भगवान ने की। तो महाराज परम पिता परमात्मा के रूप में जो सद्गुरुदेव भगवान आते हैं वे भी कल्पवृक्ष के समान ही है। हम जैसी कल्पना करते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं, जैसी आस्था रखते हैं, जैसी श्रद्धा रखते हैं, वैसा ही हमको फल प्राप्त होता है। यदि हमको जो धन संपत्ति चाहिए तो सद्गुरुदेव भगवान क्या देते हैं, धन संपत्ति देते हैं। सामने उदाहरण देखो बैठे हैं ये भाई साहब, हैं देखो इनके जीवन की घटना की हमको आश्चर्य होता है। लोग भी आश्चर्य करते हैं और लोग विश्वास भी जल्दी नहीं करते, लेकिन आज आपके सामने प्रमाण है। एक नहीं अनेक ऐसे भक्त बैठे हैं जो साक्षात जिन्होंने गुरुदेव भगवान में श्रद्धा की, आस्था रखी, विश्वास रखा, और जो जो कल्पनाएं की, जो जो मनोरथ किया, वह का वह मनोरथ पूर्ण रूप से सफल भी हुआ। तो ये सद्गुरुदेव भगवान की कृपा है, इसलिए हमको समझने की कमी है। ऐसे संत महापुरुष हमारे जीवन में होते हैं, आते हैं, लेकिन हमें करना क्या है। देखो एक बात बताएं आपको, संतों के पास जाओ तो क्या मांगना चाहिए, भगवान के पास जाओ तो क्या मांगना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं महाराज, घर में रहते हैं ना, तो आज मंदिर जाएंगे या गुरुजी के पास जाएंगे तो बड़ी लंबी लिस्ट बना देते हैं, एक हाथ लंबी, क्या क्या मांगना आज, और वो लिस्ट ले जा करके 100 रुपये का प्रसाद चढ़ा दिया, भगवान ये सारी लिस्ट आपके सामने है। करते हैं कि नहीं करते है? लेकिन भाई उस
परमपिता परमात्मा अंतर्यामी को क्या पता नहीं आपको क्या आवश्यकता है, बताओ? पता है ना। तो जब संत के पास में जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, तो सदैव यही मांगो, प्रभु मेरी बुद्धि सदकार्य में लगे, मेरे जीवन में सत्संग आए, मेरा मन प्रभु आप में ही लगे। यदि यही मांगोगे तो जीवन आपका सफल हो जाएगा, नहीं तो धन संपत्ति तो आपको मिलनी ही है। जो केवट था, जानते हो केवट कौन था? भगवान राम जब वनवास के लिए जा रहे थे, उसमें नदी पार करनी थी, और नदी पार करने के लिए भगवान ने कहा केवट नैया लेकर के आओ। तो केवट ने कहा मैं नाव नहीं लाऊंगा प्रभु। बोले क्यों, क्या दिक्कत है? बोले प्रभु मेरी एक ही नाव है, इस नाव को आपने स्पर्श कर दिया, आपका चरण रज लग गया, तो महाराज ये नाव स्त्री बन जाएगी, और स्त्री बन जाएगी तो मेरे जो क्या दिनचर्या, जो रोजमर्रे की जो क्या जीवन चलाना, गृहस्थी चलानी है, वो कैसे चलेगी? एक ही नाव है, और दूसरी बात एक स्त्री है ही मेरे घर में, मेरी पत्नी है ही है, और दूसरी और स्त्री होगी तो पालना मुश्किल हो जाएगा, परिवार को कैसे पालूंगा? भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं। बोले प्रभु मैं सब जानता हूँ आपकी लीला, आपने पत्थर को स्पर्श किया तो स्त्री बन गई, ये तो लकड़ी और कमजोर है। तो बाद में कहा कैसे लाओगे? प्रभु आपका यदि चरण रज मुझे दे दें आप धोने के लिए, तब जा करके मैं नाव लाऊंगा। और भगवान ने बात मानी, चरण धोया, नाव में बैठे, पार गए। पार जैसे गए तो अब जब जाते हैं तो महाराज कुछ देना ही होता है आपको, कोई उस पार ले जा रहा है तो नाव वाले को कुछ देना चाहिए। तो भगवान ने सोचा कुछ दिया जाए, भगवान के पास कुछ है नहीं। भगवान सोच रहे थे, चिंतन कर रहे थे, उसी समय माता जानकी जी समझ गई कि मेरे स्वामी को क्या चाहिए। सच्ची पत्नी वही है कि किसी भी परिस्थिति में पति का साथ न छोड़े। पति की क्या परिस्थिति है? सुख में भी तो भी साथ रहे, दुख में भी तो भी साथ रहे। तो माता जानकी जी समझ गई कि मेरे स्वामी को क्या चाहिए। अपनी जो मुद्रिका थी उस मुद्रिका को उतार करके दे दिया, स्वामी यही इस नाविक को उतराई दे दीजिए, आने जाने का किराया हो जाएगा। जैसे ही भगवान देने लगे तब केवट ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब

0: सिया राम। उस केवट ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों, क्यों नहीं चाहिए? भाई आपका कार्य क्या है, इस पार से उस पार ले जाना, और ले जाते हो तो उसके बाद क्या होता है, आपकी पेट पूर्ति होती, परिवार चलता है। कहा प्रभु जो मेरा कार्य है आपका भी वही काम है, आप भी क्या करते हो, इस भवसागर से पार करते हो और मैं भी इस किनारे से उस पार करता हूँ। प्रभु मैंने आपको इस किनारे से उस पार किया है तो आप भी क्या करना, मुझे उस पार कर देना, यही मेरी उत्तर है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। तो सज्जनों, गुरुदेव भगवान के पास जाओ, मंदिर में जाओ, तो यही मांगो, ये याद कर लो चौपाई, अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु अब तो अब बस आपका अनुग्रह ही चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, और कुछ धन संपत्ति दौलत मुझे नहीं चाहिए। आपकी कृपा से पल रहा है, सब काम चल रहा है, बस यही है कि मेरा मन विचलित हो रहा है। इसलिए से मन को शांत कैसे करें, प्रभु आप कृपा करें, मेरा मन लग जाए। तो परमपिता परमात्मा की कृपा से, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से, आप सभी इस परम पवित्र सत्संग सभा में आए हैं, और आकर के इस दिव्य सत्संग सभा के जो हीरे मोती है, क्या है, हीरे मोती है, अनमोल रत्न है, ये बार बार मिलने वाले नहीं है। देखो हमेशा नहीं मिलते हैं, बाबा जी की कृपा से आप लोग जुड़े हुए हैं, और साल में दो तीन अपने ऐसे अवसर आते हैं, और उसमें भी यदि छुट्टी मार दोगे तो महाराज इसका फल मिलने वाला नहीं है। ये परम पवित्र और परम दुर्लभ भी है, तो इस दिव्य सत्संग सभा का आप लाभ लें, आनंद लें, भजनों का आराम तो करना ही है, सोते सोते आधा जीवन बीत गया, आधा और बीत जाएगा, कुछ रहने वाला नहीं है। इसलिए आए हैं तो दिव्य आनंद लें, जब तक शरीर साथ दे, एक दिन की बात है, बाकी की हमेशा रात ही रात है, सोना ही सोना है, इसलिए आज दिव्य आनंद ले। दीपनारायण भगवान की। अब थोड़ा अंग्रेजी में भी बोल दें, बाबा जी की कृपा से थोड़ी भाषा आई, ये भी लोग सज्जन गुरुभक्त बैठे हैं, तो सैल्यूटेशन टू द डिवाइन, ओम श्री अलकपुर जी सिद्धपीठ परंपरा। आई वुड लाइक टू बो हिज होलीनेस अवर बिलव्ड गुरुदेव विश्व गुरु जी होली फिट ऑन द डिवाइन ओकेशन ऑफ महाप्रभु जी एनिवर्सरी। वी आर हैविंग डिवाइन सत्संग ऑन बिहाफ ऑफ महाप्रभु जी डिवाइन डे, समाधि डे, एंड वी ऑल आर सो फॉर्चुनेट वन, लकीस्ट वन, दैट वी आर हैविंग दिस सत्संग इन ओम आश्रम, विच इज द स्पिरिचुअल सेंटर ऑफ योगा इन डेली लाइफ। हियर अवर डियर ब्रदर महामंडलेश्वर श्री स्वामी ज्ञानेश्वरपुरी जी महाराज, ऑल डियर भक्ताज, ऑल द सन्यासीज ऑफ दिस परंपरा, आई वुड लाइक टू से हरि ओम टू एवरी वन एंड वेलकम टू दिस डिवाइन सत्संग। विद द ब्लेसिंग ऑफ विश्व गुरु जी वी आर हैविंग सत्संग एट भक्ति सागर। वी हैव गॉट ऑल्सो ब्लेसिंग ऑफ विश्व गुरु जी टूडे इवनिंग, ही वॉज हियर, ही वॉज ब्लेसिंग अस, वी हैड प्रेयर विद हिम, एंड देन ही सेड ओके यू डू सत्संग, आई एम गोइंग सिटिंग देयर, ब्लेसिंग फ्रॉम देयर। सो विश्व गुरु जी इज ऑलवेज विद अस, ही इज ऑलवेज गिविंग ब्लेसिंग वेर एवर ही इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट अस, ही इज ऑलवेज थिंकिंग दैट वॉट माई भक्ताज चाइल्ड डूइंग, हाउ दे आर डूइंग। सो विद हिज ब्लेसिंग वी आर ऑलवेज डूइंग, और वी आर ऑलवेज प्रैक्टिसिंग दैट वी डू ऑलवेज गुड। सो द डिवाइन सत्संग वी आर हैविंग हियर, यू नो द ग्रेट ऋषिज, ग्रेट सेंट्स, दे कम ऑन दिस अर्थ नॉट फॉर देम सेल्फ, बट दे कम फॉर द ह्यूमन बींग, फॉर द क्रिएचर्स हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, विच इज ऑलवेज वेरी हार्ड। वी आर ऑलवेज trying our best to escape from this cycle, that we can liberate, we can know ourselves for the self-realization, but without guru, without divine saints, without parampara, we cannot know anything. So we have got a great rishi, or we are belonging to the great parampara, which has given us the great saints. And the saints, they are showing the divine path. So Mahaprabhu ji is always with us. He is always showing the way. You all have many time heard, or you have experiences in your life, that how Mahaprabhu ji is guiding us. In any way, I have heard many stories from the Europe, that one couple, they were going through the car in the jungle area or somewhere, but they have finished the petrol or diesel, something, and they couldn't go further. And then they were remembering Vishwaguruji and Mahaprabhuji, please help us, how we will go to the home, it's dark already and nobody is here, there is no petrol pump near us, so please God help us. And suddenly some guy came there with the diesel or petrol, he gave them this thing and they were filling, and they have got this thing, oil, and now they were driving the car to the home. So this is the blessing. When they saw, after 1 minute, there was nobody. So this is the divine blessing of Mahaprabhuji. When you have a pure bhava, purity, when you have the Shraddha, Vishwas, believe, then it comes to you. So Mahaprabhuji is always guiding us. He's always giving the divine blessings. I was telling them stories about Guru Kripa, about Gurudev, that without Gurudev, we cannot live in this life. Without Gurudev, we don't know what to do, how to do, when to do. So when Gurudev comes in our life, he shows us each and everything. So I was telling stories that there a saint was there. He was going to a village, and there was one person who was not believing in a God, in a saints. He was just living life like an animal. You know, what does animal? Eating, sleeping, having children. This life is animal having. So he was also living like that. So one saint was there, he was thinking that I should give him some knowledge. I should bring him to the God. So he went there and he was asking that, oh human, do you know how do I look, who I am? Then he told, you look like a buffalo, which is in our village. Then that saint thought, still his heart is not clean. He's suffering very hardly. So I should tell him some mantra. So he gave a mantra and he just told, just chant it till 1 year, till I come back. And after 1 year, he went back there. Then he was asking again, so how do I look now? Then he said, okay, yes, now you look like a human. Okay, that saint was happy that mantra is working. He is chanting the mantra. So it's becoming slowly clearing his heart. He's thinking, he's doing. Okay, he said again, okay, I will go and I will come back after some time. So after some time when he came, then he was asking again, how do I look now? Then he told, now you're looking like a devas. What do you say, devas? God. Then he, next time when he comes, fourth time, then suddenly when he saw the Guruji, he was not looking. He came and he ran. He just make a dandavat pranam. Oh Gurudev, thank you. Now you are not a human. You are not a human body, but you are God. You have shown me the divine way, divine knowledge, that I can now see each and everywhere God. So that is Gurudev. He bringing us from the ignorance to the knowledge, from darkness to the light. So with the blessing of Gurudev, we are also coming to the light. We are also going near to the God. So this is only possible with the blessing of Gurudev. So we all are luckiest one. We are having the divine master in our life. and we should always follow what Gurudev is saying, what he is guiding us, how he is guiding us. So that's why we always thankful to the Gurudev. Please Gurudev, always bless us and guide us in a divine way. So thank you for listening. We are having divine satsang on the occasion of Mahaprabhuji's anniversary. So we will have now some bhajans. We have Sukhya Bhai here, Papuji Garg, all the bhaktas, Indian bhaktas here, Devilal ji, Narendra ji, and all children from our school, college, Indian bhaktas here, all karma yogis. So enjoy satsang. Deep Narayan Bhagavan ki, Dev Purishama Dev ki. And I forgot our music teacher, Ashok ji. He's singing very nice, very beautiful bhajans of our parampara, and he's always coming here. So welcome to Divine Satsang, and we will also listen to him. Deep Narayan Bhagavan ki jai. Papuji Garg, kaun gayenge bhajan? Aiye gaiye aap log bhajan. Haan, bhai ji gao.
1: बोलिए सदगुरु भगवान की, माता पिता गुरुदेव की जय, श्री दीप नारायण भगवान की, श्री माधवानंद जी महाराज, अनंत कोटि संत महापुरुषों की।

हरि ओम। सभी भक्तों ने प्रसाद पाया भाई? सबने प्रसाद पा लिया? हाँ, तो प्रसाद ही बनाने की जो सेवा में लगे हुए हैं अपने गुरु भक्त, जो गुरुदेव भगवान के शिष्य श्री पृथ्वी सिंह जी और महेंद्र सिंह जी, वे हमेशा जो है भगवान की कृपा से सत्संग का लाभ तो कम लेते हैं, लेकिन आप लोगों की जो है क्या कहते हैं ना, भोजनामृत का, प्रसादी का लाभ देते हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जो भी भक्तगण आए हैं आप लोग प्रसाद लेकर के, आज की रात्रि तो कम से कम जब तक शरीर साथ दे तब तक क्या करिए, सत्संग का श्रवण करिए। हमेशा हमेशा तो मिलने वाला है नहीं, तो परम पिता परमात्मा की कृपा से जो मिला है उसका क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। और सदुपयोग कहाँ करना चाहिए, सत्संग में। सत्संग का तात्पर्य क्या है, सत्संग, सत अर्थात सत्य, जो सत्य है उस सत्य का संग करना, उस सत्य के साथ रहना, उस सत्य के साथ जीना, उस सत्य के साथ चलना, यही क्या कहलाता है, सत्संग। तो सत्य क्या है, सत्य किसे कहते हैं, आप सत्य मानते हो ना कोई चीज़ को, तो किसे कहते हैं सत्य? सत्य उसे कहते हैं जो तीनों कालों में एक समान रहती है, जो कभी बदलती नहीं है, उसे क्या कहते हैं, सत्य। किसी व्यक्ति ने कोई बात कह दी और वो बात बदल गई कि पहले तो आपने ऐसा कहा था अब ऐसा हुआ नहीं, तो वो सत्य कहलाएगा? नहीं, जो तीनों कालों में एक समान रहे उसे क्या कहते हैं, सत्य कहते हैं। तो तीनों कालों में एक समान कौन रहता है, क्या आप, हम, जो सब दिख रहा है, झूपा है, ये शरीर है, ये मंदिर है, ये सत्य दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है, लेकिन यह वास्तविक सत्य क्या है? देखो, आप स्वप्न देखते हैं, हाँ देखते हैं स्वप्न, तो स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में हाथी घोड़ा आया, बैठ करके गए बढ़िया से, सब देवता सामने आए, और जैसे ही नींद खुली तो स्वप्न टूट गया, तो फिर क्या कहते हैं, ये तो सत्य नहीं, सपना था। उसी प्रकार ये संसार भी क्या है, सपना है। कौन कह रहे हैं सपना है, मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, भगवान शिव कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं,

जय जय राम। भगवान शिव कह रहे हे उमा हे पार्वती, मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ। भगवान शिव अपना अनुभव कह रहे हैं। उमा कहु मैं अनुभव अपना सत हरि भजन, भगवान का भजन भगवान ही सत्य हैं, बाकी सब ये तो जगत क्या है, सपना है। महाराज सपना कैसे हैं, कैसे सपना बताओ, सामने तो दिख रहा महाराज। सपना वो होता जो हो दिखता पर होता नहीं है, पर यहाँ तो दिख भी रहा हो भी रहा है, हो रहा कि नहीं हो रहा बताओ। सामने हम बोल रहे तो सत्य दिख रहे कि नहीं दिख रहे, लेकिन सपना कैसे हैं कि जैसे ही यह समय बीत जाएगा, कौन सा समय, जो समय चल रहा है वर्तमान समय में, तो मैंने कहा तीनों कालों में, वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, तीन काल होते हैं, तीन काल की सत्ता होती है। तो क्या यह तीनों कालों में है, क्या 100 वर्ष पहले आश्रम था, 100 वर्ष पहले हम लोग थे क्या यहाँ बताओ, 100 वर्ष पहले थे इस शरीर में, नहीं थे, तो भूतकाल में नहीं थे, वर्तमान में है, और आगे भी पता नहीं 100 वर्ष बाद रहोगे क्या। जो तीनों कालों में नहीं है वो क्या है, असत्य है, और जो तीनों कालों में भगवान पहले भी था, अभी भी भगवान है और आगे भी रहेगा। कहाँ भगवान, परमात्मा के जर्रे जर्रे में परमात्मा व्याप्त हैं। ईसा आवाश्यमिदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत, परम पिता परमात्मा संपूर्ण जगत में व्याप्त है। किसमें, संपूर्ण जगत में। एक प्रश्न भी उत्तर भी है, क्या है बोलो, कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है, और उत्तर भी यही है, कण कण में भगवान है। इसलिए उस परम पिता परमात्मा को सदैव स्मरण करते रहो, सदैव याद करते रहो, सदैव भजन करते रहो, तो महाराज बेड़ा पार है, नहीं तो इधर से उधर आर पार तो होना ही है। बोले दीपनारायण भगवान की। अब अपनी मधुर वाणी से पप्पू जी गर्ग आपको भजन सुनाएंगे। हमारे गुरु भक्त अशोक जी आप भी इधर आ जाएं, गणपत जी आप भी, और बैठ करके दिव्य प्रकार से भजनों का आनंद हम सबको प्राप्त कराएं।

हरि ओम। माता जी लोग, आप लोग थोड़ा विराम करो, फिर बाद में सुबह फिर गाने का अवसर मिलेगा, ठीक है? अभी भजन मंडली आई हुई हैं, इनको भी थोड़ा अवसर दे देते हैं। तो अभी अशोक जी चौहान अपने सुमधुर कंठ से बाबजी के भजनों के द्वारा हम सबको आनंद प्राप्त कराएंगे। अशोक जी चौहान, आप हमारे गुरुकुल में संगीत के अध्यापक भी रहे हैं और बाबजी की कृपा से, माँ प्रभु जी की कृपा से आपने स्टेट लेवल तक भी संगीत के माध्यम से अपने प्रतिभा को जो है राजस्थान का नाम उजागर किया है, राजस्थान के नाम को जो है वहाँ तक लेके गए हैं। तो सब बाबजी की कृपा है। और यहाँ का इतिहास भी सुनाऊँ मैं आपको, तो यहाँ इस आश्रम में जब से मैं बालपन से अध्ययन कर रहा हूँ तब से अनेकों अध्यापक आए हैं और अनेकों अध्यापकों ने एक दो वर्ष इस आश्रम में निवास किया, रह करके सच्ची श्रद्धा से ईमानदारी से पढ़ाया। और जिन लोगों ने बाबजी पर विश्वास किया, आस्था रखी, ऐसे 50-60 अध्यापक टीचर्स मैं जानता हूँ जिनकी गवर्नमेंट में जॉब लगी, ये सब बाबजी की ही कृपा है। यदि आपकी सच्ची श्रद्धा है, आस्था विश्वास है, तो निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा आपकी सुनता है और आपके मनोरथ को पूर्ण करता है। तो उसमें से हमारे आदरणीय गणपत जी, आप भी जो है बहुत वर्षों तक आपने अध्ययन कराया और अभी वर्तमान में आप जो है सरकारी में जो है अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत सुंदर प्रकार से केमिस्ट्री इत्यादि का अध्ययन कराते हैं। तो बाबूजी की कृपा बरसती हैं, बस लेने वाला चाहिए। परमात्मा तो क्या करता है, वर्षा करता है। अब आपके पास कितना सामर्थ्य है, लोटा लेके जाओगे तो महाराज लोटा भरोगे, थाली लेके जाओगे थाली, बाल्टी लेके जाओगे बाल्टी। तो इस प्रकार परमात्मा की कृपा बरसती रहती है। तो आइए हम लोग सुनते हैं अशोक जी चौहान को। दीप नारायण भगवान की जय हो।

महाठगनी हम जानी। त्रिगुण फांस लिया कर डोले द रोप हैव इन हैंड टू हैंग यू अप बट टिल दैट सी हैव वेरी स्वीट लैंग्वेज वेरी स्वीट वेरी हम्बल हाउ टू कैच यू एंड देन यू आर होल्डिंग लाइक दिस स्नेक इन योर हैंड्स सो दिस माया दिस संसारास देयरफॉर इट इज सेड पतन और उथन दो बोथ हैज बीन सॉन सो भगवान विष्णु सेठ लक्ष्मी देवी गॉडेस लेट्स गो बैक टू अवर वैकुंठा दैट इज मच बेटर सम टाइम टू टाइम नो नारदा कम्स दैट्स ऑल एंड सो केम देयर एंड दे वेंट सो बट बोथ One seed. So the roots are in one. But what is proud came out, one is this and that. So what is that one? One is

सत्संग ओ सज्जन वाली लागे ओ सदाई सत्संग। ओ माई डियर वन, ओ माई फ्रेंड्स, आई लव सत्संग। श्रुति और स्मृति गावे, श्रुति व्हाट इज स्पोकन, स्मृति व्हाट इज इन मेमोरी। दिस इज फ्रॉम वेदास, श्रुति स्मृति। श्रोता श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय, दिस मेनी डेफिनेशन आई विल टेल यू आफ्टर। सुख बैंकुंड स्वर्ग नहीं दुर्लभ, दुर्लभ है सत्संग। सुख बैंकुंड स्वर्ग।

श्री अलकपुरी जी महादेव की, देवाधिदेव देवेश्वर भगवान दीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, मात पिता गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की जय।

0: या भी
1: सिद्धि नारायण भगवान की श्री श्री देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की देवादि देव देवेश्वर महादेव की अलकपुर जी महादेव की जय। 11 times reciting the Om.
2: Diese Netzer Omlas.
1: There are different centers.
2: Vannak különböző központok.

श्रीनारायण भगवान की श्री श्री देवपुरी महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की गुड इवनिंग ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम दलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा. After a long time, again we are together with webcast, and first of all, would like to tell you that our Alakpuri Ji Siddhpeeth Parampara have become very beautiful, very spiritual. Energy is there, and

0: ओम शलभपुर्ज महादेव की जय।
1: जय।
0: देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्री दीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुर जी सदगुरुदेव भगवान की जय।
1: जय।
0: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वर आनंदपुर जी गुरुदेव की जय। सदाशिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात्परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सल्यूटेशंस टू द कॉस्मिक सेल्फ, सल्यूटेशंस टू श्रील पुरुषोत्तम पीठ परंपरा। माय डनवत प्रणाम स्व बिलव्ड गुरुदेव हिज होलीनेस विश्व गुरु महामंडलेश्वर महेश्वरानंद गुरुजी। ओम नमो नारायण टू द ऑल द सन्यासीज प्रेजेंट हियर एंड हरि।

गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आदरणीय मंचस्थ महामंडलेश्वर जी, ज्ञानेश्वर पुरी जी जोधपुर से पधारे हुए महामंडलेश्वर जी और कपिल जी, फूलपुरी जी, महामंडलेश्वर फूलपुरी जी महाराज, राजेंद्रपुरी जी और यहाँ के सभी अध्यापक वृंद, आए हुए हमारे अतिथि झूमरलाल जी और समस्त विद्यार्थी गणों, आज के शुभ अवसर पर आज द्वादश ज्योतिर्लिंगेश्वर महादेव का द्वितीय पाठोत्सव को हमने मनाया है और बड़े धूमधाम समारोह पूर्वक महादेव जी का अभिषेक करते हुए हमने उनका शुभारंभ किया है और दूसरा पाठोत्सव इसको हमने बनाया है। इसको वर्षगांठ भी कहते हैं और वास्तव में इसको पाठोत्सव भी कहते हैं। पाठोत्सव का अर्थ है पाठ का मतलब खोलना और उत्सव का मतलब सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी पाठोत्सव तो हमने मनाया। अब इस अवसर पर मैं अपने दो शब्द आपको, क्यों चूंकि विद्यार्थी हमारे समक्ष बैठे हैं और गुरुजन हमारे समक्ष बैठे हैं तो एक छोटी सी बात आपको कहता हूँ। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, क्योंकि स्वामी महेश्वरानंद जी ने दैनिक जीवन में योग की परंपरा को स्थापित करते हुए हमारे देश के साथ साथ संपूर्ण विश्व को भी अपनी एक शिक्षा दी है। दैनिक योग के साथ साथ आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, आहार को शुद्धिकरण करने के लिए उन्होंने बल दिया। हम भारतीय लोग भी आहार शुद्धि रखते हैं और आहार शुद्धि रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि आहार से हमारा मन शुद्ध होता है। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व का मतलब हमारा ये शरीर, भौतिक शरीर, हमारा जैसा भोजन होगा वैसा ही हमारा शरीर होगा। इसलिए आयुर्वेद में, सुश्रुत में बड़े बड़े चरक आचार्यों ने आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, अगर हमारा ये सत्व, हमारा शरीर एकदम अच्छा हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा तो हमारे स्मृति जो को जिनको कहते हैं मेमोरी, स्मृति, ये एकदम स्थायी रूप से हो जाएगी और जो भी हम याद करेंगे वो तत्काल हम पूर्ण रूप से उसको याद कर पाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी का एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। वो एक पुस्तक को आगे से पढ़ना प्रारंभ करते थे, पीछे तक पढ़े बिना उस पुस्तक को छोड़ते नहीं थे और उसको पूरा पढ़ करके उसका पूरा पूरा नॉलेज क्या होता है वो स्वामी विवेकानंद जी को तत्काल ज्ञात हो जाता, क्योंकि आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि, ध्रुवा स्मृति। तो बच्चों, हमें अपने आहार को सुधारना है। यदि आहार सुधर गया तो हमारे मस्तिष्क, मन, मस्तिष्क और पूरा वातावरण सुधर जाएगा। तब आप लोग कह सकते हो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम्। मैं जब जब धर्म की हानि होती है तब तक अवतरित होता हूँ। वो ईश्वर आप में ही अवतरित होगा, अपने आप को स्वयं को बनाएंगे तो अवश्य ही इस पूरे संसार में विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम जागृत कर पाएंगे। तो बच्चों, विवेकानंद जी ने भी कहा है उठो, जगो और चलो अपने मार्ग पर। आपका कौन सा मार्ग है जो आपके प्रारब्ध ने आपको निश्चित करके संसार में भेजा है? इतना कह करके एक साथ एक भगवान की धुनि करते हैं। आप भी मेरे साथ बोलेंगे दीप निरंजन सब दुख भंजन, दीप निरंजन।

0: प्रभु सिदीप निरंजन सब तुक भंजन। आज इतना ही, धन्यवाद। आपने हमको सुना और आचार्यों के सभी चरणों में श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। और ऐसे कार्यक्रमों में बार बार पधारते रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम बार बार होते रहे हैं। इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य यही है। बोलिए श्री दीप नारायण भगवान की, होली गुरु जी माधवानंद जी गुरुदेव की, देव पुरुषा महादेव की, विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेशानंद जी गुरुदेव की, आज के आनंद के।
1: गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै से गुरुदेव नमः। सबसे पहले मेरे पूज्य गुरुदेव विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी के चरणों में वंदन करता हूँ। और आज स्वामी जी ने आपको सब बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है। मैंने अभी आपकी सबकी फ़ोटो स्वामी जी को भेजी है, तो वो बड़े खुश हुए हैं और उन्होंने आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है। मंच पर विराजमान हमारे महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वरपुरी जी, महामंडलेश्वर स्वामी फुलपुरी जी, जोधपुर से आए हुए हमारे संतजन, हमारे राजेंद्रपुरी जी, छगन जी, चंदन जी, हमारे माधव जी, और हमारे विदेशी भक्त जो इस कार्यक्रम को यहाँ से लाइव देख रहे हैं अपने अपने देशों में, और इस स्कूल के आपके सुरेश जी गर्ग और इतने सारे बच्चे जो यहाँ आए हैं, आप सबका मैं स्वामी जी की तरफ से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आप सबको। ये विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि वैसे तो आपको पता ही है कि आज हमारा जो दुनिया का 8वां अजूबा है ओम आश्रम, उसकी सेकंड एनिवर्सरी है। मतलब आज के दिन हमारे इसकी उद्घाटन हुआ था, 2 साल हो गए हमारे इसको बने हुए, उद्घाटन हुए हुए। तो इस आश्रम के बारे में और स्वामी जी ने जो ये बनाया है आश्रम के बारे में, मैं सब बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में ये पहला मानव निर्मित भवन है जो हमारे गुरुदेव ने बनाया है। तो हमें ये गर्व महसूस करना चाहिए कि हमारे भारत में और हमारे राजस्थान में एक ऐसा अजूबा है जो पूरे विश्व में और पूरे ब्रह्मांड में ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। तो हमें बड़ा गौरवान्वित महसूस करना चाहिए, और इसकी सारी जो ख्याति है और जो इसकी जो महिमा है वो सारी हमारे जो साधु संत हैं जो यहाँ पे विराजमान हैं, आप देखेंगे विदेशों से भी बहुत सारे लोग आते हैं। ये पहला ऐसा सेंटर है जिसमें करीबन इतने सारे विदेशी लोग आके यहाँ पे पूजा करते हैं। तो ये हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी शक्ति है। हमारा सनातन धर्म में जो ताकत है वो पूरी स्वामी जी ने विदेशों तक फैलाई है, और उसके लिए हम स्वामी जी को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। हमें खुशी है कि इतने सारे बच्चे इस उम्र में अगर आके और जिस सनातन धर्म का ये सुन रहे हैं ओम आश्रम के बारे में, तो ये एक हमारे सनातन धर्म की बहुत बड़ी शक्ति है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।
2: ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वान्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलमचलं सार्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। इस मंत्र के साथ मैं हमारे पूज्य गुरुदेव विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंसानंद जी को प्रणाम करता हुआ, अब मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बोलूंगा। आपको तो वैसे सबको इंग्लिश तो आती ही है, क्योंकि आधा आधा इंग्लिश तो बोलते ही रहते हैं। सो आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सेकंड एनिवर्सरी ऑफ ओपनिंग ऑफ ओम आश्रम। Today we have a great guest. We can say our friends, our colleagues, our well-wishers. Mahamandalesharam Shri Swarupananji Maharaj from Jodhpur. He is excellent speaker on all kathas or Ramayana, on Shiv Puran, Bhagavad Katha. he speaks on Advaita Vedanta, on Upanishads, in many places. He has his ashram in Jodhpur, Ahmedabad, he's traveling very often, and many, many places. Beside him, you can see our Swami, Mahamandaleshwar Swami, Chetan Giriji Maharaj from Sojat. He's connected with us for the last 40 years. So I'm welcoming both of them to our ashram. Mahamandaleshwar Swami Fulpuriji doesn't need any introduction. He is part of our family. Acharya Rajendra Puriji is also here. And we have also on one side, we have Kapilji Agarwal from Jaipur, a big businessman. And our Mother Prasad Sharma, who taught many of us Bhagavad Gita and many other shlokas. So I welcome him also. We have here Chandanji, Chaganji, all the Nepal Rani, all our friends are now on the stage. So this is the opportunity to remember that Swamiji did a miracle. He managed to create a big ashram, such amazing structure that we can even call it the eighth wonder of the world. I was just now in Bikaner and I saw that even the king took a lot of time to make some temple. But Swamiji managed to overcome so many problems, so many things, and he managed to give to the world, to the India, this amazing Om Ashram, Dvadash Jyotirling, and all us together united under one roof. तो बाप जी ने जो यहाँ काम किया था एक चमत्कारी बात है चाहे 25 साल 30 साल लग गया लेकिन संपूर्ण हो गया जो आप सुन रहे थे एक जुबा है एक चमत्कार है ये मंदिर बनाना बहुत मुश्किल काम होता है और ऐसे बड़ा मंदिर बनाना इससे डबल गुना बड़ा है तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग स्कूल से पधारे स्कूल हमारे निदेशक साहब को और सारे टीचर को मैं धन्यवाद देता हूँ और आपकी इतनी शांति से बैठे मैं सबको धन्यवाद देता हूँ इस शब्दों के साथ जय श्री राम

महामंडलेश्वर विश्व गुरु मेसन जी के शिष्य महामंडलेश्वर ज्ञानेश्वरपुरी जी और पूज्य गुरुदेव मेसानंद जी के ही शिष्य महामंडलेश्वर श्री फूलपुरी जी और उन्हीं के शिष्य राजेंद्रपुर जी और यहाँ पर मंच पर उपस्थित समस्त अतिथि आश्रम के आत्मीयता से जुड़े हुए सभी और आज इस आश्रम की ओम आश्रम की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा द्वितीय उत्सव के वार्षिक उत्सव पर उपस्थित समस्त बच्चों प्यारे बच्चियों ध्यान देना। एक हमारा मंत्र है, आप विद्यार्थी हैं और इस आश्रम से यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसा यहां पर गुण, संस्कृति भारत की जो है उससे ओतप्रोत यहां पर कराया जाता है। न गुरोर अधिकम तत्वम, न गुरोर अधिकम तपह, तत्व ज्ञानात परम नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों का सबसे जीवन के अंदर सबसे बड़ा ऐश्वर्य है वो विद्या है। विद्यार्थियों की सबसे बड़ी यदि कोई ऐश्वर्य है वो विद्या ही है और उस विद्या को बच्चों ध्यान देना, बात को आप गेट की तरफ आप ध्यान नहीं दे, जिनको बाहर जाना तो जाइए, बच्चों का ध्यान बार बार उधर जा रहा है। बच्चे आपके जीवन के सबसे बड़ा ऐश्वर्य विद्या है और विद्या जो है ना, अब अपनी मारवाड़ी भाषा में थोड़ी बात कर लेता हूं आपसे कि हम किसी से यदि कुछ अर्जित करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं तो वहां अपन पुत्र बनकर के, शिष्य बनकर के, पूर्ण शनाकत धारण करके हम अर्जित कर सकते हैं। बाकी कोई व्यक्ति अपने अहंकार से, अभिमान से या घमंड से कोई किसी से कुछ नहीं अर्जित कर सकता है। इसलिए विद्यार्थी के लिए जीवन के अंदर गुरु से बढ़कर के और कोई तत्व नहीं है। ना गुरोर अधिकम तत्व, गुरु शब्द का अर्थ है जो हमारे पूज्य गुरुदेव मेसरन जी ने पूरे विश्व के अंदर जिस ज्ञान का प्रकाश फैला करके पूरे विश्व के प्राणियों का ध्यान भारत भूमि की तरफ और उसी भारत भूमि के अंदर राजस्थान प्रदेश और राजस्थान के अंदर ही भी वो पाली डिस्ट्रिक्ट, पाली जिला और पाली जिले के अंदर ही ये पाली और सोजत के बीच में ये डाडन जो भूमि है, जहां पर जो अभी अभी बताया गया कि विश्व का ये आठवां अजूबा जो ओमकार का स्वरूप में यहां पर दिव्यता से उत्पूर्ति ओम आश्रम की स्थापना, तो वो जो ज्ञान जो अपन को अज्ञान पे अंधकार से हटा करके ज्ञान पे प्रकाश की तरफ जो अपन को बढ़ाए उनको गुरु कहा गया है। अपन आज कम से कम यहां पर अभी

0: जो विद्यार्थी है करीब 480 और 500 के बीच में यहां पर विद्यार्थी बैठे हैं। अपन सब यहां से अपने जीवन का तत्व जान रहे हैं। हां, आप एक भाषा को तो सीख रहे हैं, इंग्लिश भाषा है, संस्कृत है, हिंदी है, ये सब भाषा जीवन के तत्व को जानने का एक माध्यम है। गुरु से बढ़कर के इस जगत के अंदर कोई ऊंचा नहीं है, ना गुरु अधिकम तत्वम, गुरु से बढ़कर के कोई जीवन के अंदर अपना तत्व नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, ना गुरु अधिकम तप, गुरु से बढ़कर के कोई तप नहीं। हमने देखा है कि जिस समय इस आश्रम की, यहां पर कुछ नहीं था, जंगल था, बबूल आदि यहां पर झाड़ियां खड़ी थी, परंतु विश्व गुरु महामंडलेश्वर जब महेश्वरानंद जी महाराज की वो शुभ दृष्टि का पात हुआ इस भूमि पर, उनकी जब नजर यहां पर पड़ी तो यहां पर देखिए, जहां संत है वहां वसंत है। यहां पर पूज्य गुरुदेव की नजर पड़ी और गुरु जी का माधवानंद जी की भी कृपा हुई, और यहां पर इस जहां पर कांटों की झाड़ियां थी, आज यहां पर पूरे विश्व के अंदर लोग यहां पर पर्यटक के रूप में आ रहे हैं। ये संत, जहां संत है वहां वसंत है, वसंत का मतलब आनंद है, और जिस आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है, ओपोजिट वर्ड नहीं है, सुख का दुख है, लाभ कहानी है, जय का पराजय है, परंतु आनंद का कोई विलोम ओपोजिट शब्द नहीं है। तो ये गुरु की ही तपस्या है कि एक 25 साल के अंदर इतना भव्य, सही पूछो तो कभी कभी तो हमारे मन में भी आता था कि महेश्वरानंद जी महाराज ने इतना बड़ा ओमकार का ये स्वरूप जो आकृति ली है, ये किस तरह से पूर्ण होगा, क्योंकि मनुष्य का जीवन एक क्षणिक जीवन होता है, किस समय क्या हो सकता है, अगले पल की जिनकी कोई खबर नहीं। और वो आज ध्यान देना बच्चों, ये गुरुजी की बहुत ही महत्व तप है, जिनसे तप से जाकर के उनके जीवन काल में ही ये ओंकार स्वरूप का जो विश्व का आठवां जुबा है बनकर के आपके हाथों से ही 2 साल पहले सभी संत महापुरुषों के सानिध्य में यहां पर इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो ना गुरोर अधिकम तत्वम, ना गुरोर अधिकम तप, गुरु से बढ़कर के और कोई तप नहीं हो सकता है। ना गुरु अधिकम तत्वम, ना गुरु अधिकम तप, तत्व ज्ञानात परम नास्ति। ध्यान देना, इसी ओम आश्रम से जो भारत भूमि, जो ऋषियों की भूमि है, ये तपोभूमि है, जहां भारत से सदैव, और जिस विद्या के कारण, जिन ज्ञान के कारण भारत विश्व गुरु कहलाया और आज भी है, ऐसी बात नहीं, जो ब्रह्म विद्या है, जो हमारे वेदों का अंतिम भाग जो उपनिषद है, उपनिषद के अंदर जो ब्रह्म विद्या है, वो ब्रह्म विद्या का ज्ञान भारत को छोड़ करके और विश्व के अंदर कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और वो ब्रह्म ज्ञान, वो ब्रह्म विद्या जो समस्त विद्याओं की राजा है, जो गोपनीय विद्या है, वो गोपनीय विद्या यहां ऋषि मुनियों के द्वारा प्रदान की जाती है। ना गुरुर अधिकम तत्व, ना गुरुर अधिकम तप, तत्व ज्ञानात्, जो ब्रह्म विद्या संपूर्ण विद्याओं का सार है, वो ज्ञान का सूत्र इस ओम आश्रम से निरंतर, और गुरुजी ने पूरी पृथ्वी का जो वसुंधरा है, अनेकों बार पूरी वसुंधरा का भ्रमण करके, एक बात और समझना, पूज्य महेश्वरन जी ने पूरी पृथ्वी का अनेक बार भ्रमण करके इस वसुंधरा और पूरे ब्रह्मांड का सार जो वेदों के अंदर भी बताया है, वो ओमकार उस निचोड़ को अपने जीवन में साधना बना करके उस साधन तत्व को यहां पर इस भारत भूमि पर अपनी ये डाडन की भूमि पर उन्होंने स्थापित करके जगत के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि जीवन का यदि कोई सार है तो वो ओम ही है। इसलिए ध्यान देना, आवता हरि ओम बोलो, बैठते भी हरि ओम बोलो, उड़ते भी हरि ओम बोलो, सुबह भी हरि ओम बोलो, उगरते प्रभात आप हरि ओम बोलो, यही जीवन का सार है, जीवन का तत्व है। आज बहुत बड़ी प्रसन्नता है बच्चों, अपने जीवन के अंदर श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होती है, जो अपने गुरुजनों के प्रति, गुरु का मतलब आप समझ लेना, गुरु से जिनसे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो तो गुरु है ही है, परंतु हमारे परिवार में भी, हमारे कुटुंब के अंदर भी जो हमारे बुजुर्ग है, जो बड़े हैं, उनके प्रति भी हमारा आदर होना चाहिए। सत्कार के साथ में आदर रहेगा, उनके प्रति हमारा मान रहेगा, सम्मान रहेगा, उनके प्रति पूर्ण शरणागति होगी, समर्पण होगा, उनके चरणों के अंदर जब अपन अपने जीवन को पूर्ण निछावर कर देंगे, तभी जाकर के वो तत्व का ज्ञान अपन को प्रकाशित होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बिना श्रद्धा के, और वो भी श्रद्धा कैसी, आदर युक्त। एक श्रद्धा तो वो भी होती है भैया, जैसे अपने जीवन भर कठिन परिश्रम करके जो पैसा इकट्ठा करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं और बैंक में जाकर के जमा कराते हैं, और वहां पर बैंक मैनेजर केवल एक सिग्नेचर करके देता है, वहां केवल बैंक मैनेजर के सिग्नेचर के ऊपर हमारी श्रद्धा है, परंतु उसी बैंक मैनेजर को यदि कभी अपन पैसा लेने के लिए वापस जाते हैं और बराबर जब कोई टॉकिंग नहीं होती है तो बाहर आकर के उसी मैनेजर को हम भला बुरा कह देते हैं, तो वो केवल श्रद्धा, वहां केवल कोरी श्रद्धा है, वो आदर नहीं है। यदि हमें अपने गुरुजनों से, अपने परिवार में जो बड़े बूढ़े हैं, उनसे हमारी जो कुल की जो परंपरा है, कुल की जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उस ज्ञान को यदि अर्जित करना है बच्चों, तो अपने परिवार के अंदर जो बूढ़े बुजुर्ग है, जो वयोवृद्ध है, हम उनके पास में बैठे। आजकल किसी को बैठने का समय नहीं है, क्योंकि हम सब अपना वो हाथ में लेकर के चलाते रहते हैं। कभी हम अपने परिवार के जो बूढ़े बुजुर्ग माता पिता है, दादा दादी है, उनके पास में बैठेंगे तो बहने भाइयों बच्चों, जीवन का बहुत बड़ा तत्व अपन को जानने को मिलेगा। और जब तक हम उनके पास में नहीं बैठेंगे तो हमारी कुल की जो संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार है, उस संस्कार का अपने हृदय के अंदर आत्मसात नहीं होगा। तो हम यहां पर गुरु जी के चरणों में बैठे हैं आज, यहां पर यही कामना करें कि हे भगवान, वो शक्ति दे, वो बल दे, वो सामर्थ्य दे कि हम अपने जीवन के अंदर जो जीवन का तत्व है उसको हम प्राप्त कर ले। जीवन, मनुष्य जीवन जिसमें सार्थक होवे, वो सार्थकता हमको प्राप्त हो जावे, इतनी हम गुरु के चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।
1: शंकरम शंकराचार्य केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योम बद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। विश्व में धर्म प्रधान भारत देश, उसमें भी पुण्यतम पवित्रतम सतियों एवं रणबांकुरों की भूमि मारवाड़ राजस्थान के पाली जाडन विश्व प्रसिद्ध ओम दीप गुरुकुल के प्रांगण में परम श्रद्धेय परमादरणीय अर्चनीय वंदनीय धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस प्रभाजकाचार्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज के बाद विश्व में सर्वाधिक भ्रमण करने वाले विश्वगुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए देवाधिदेव महादेव द्वादश स्वरूप में विराजमान उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मंचासीन इस संस्था के महामंडलेश्वर परम श्रद्धेय परमादरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस प्रभाजकाचार्य महामंडलेश्वर स्वामी फूलपुरी जी महाराज और जाडन के पास में ही विराजमान सोजत में देश के परम विद्वान वेदांत मार्तंड सभी दर्शन एवं शास्त्रों के प्रकांड विद्वान वेदों के ज्ञाता महामंडलेश्वर स्वामी चेतन गिरी जी महाराज और इसी संस्था के महामंडलेश्वर विश्व गुरु जी महाराज के परम कृपा पात्र जयपुर से पधारे महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज और संस्था को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय अवतार पुरी जी महाराज साथ ही सभी को कंधे से कंधा मिलाकर सुचारू रूप से व्यवस्थित करने में सहयोग देने वाले हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय राजेंद्र पुरी जी महाराज मंचासीन सभी संत वृंद और हमारे शिक्षक वर्ग जो देश के बच्चों का भविष्य बनाते हैं सभी हमारे अध्यापक गण और देश का भविष्य हमारे छोटे प्यारे बच्चों बड़ा ही सुंदर अवसर आज प्राप्त हुआ है। ओम दीप गुरुकुल जो विश्व प्रसिद्ध है गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में नाम है उसकी द्वितीय पाठोत्सव कहें वर्षगांठ कहें मनाया जा रहा है और आज इसी स्कूल के बच्चे हमारे सामने बैठे हैं क्योंकि मुझे याद आता है स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब विदेश गए थे तो उन्होंने भी एजुकेशन कॉलेज की भी ली थी और शास्त्र की भी ली थी। स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज ने भी कॉलेज की दीक्षा भी ली और साथ साथ में अध्यात्म और शास्त्रों की शिक्षा भी ली। इसलिए शास्त्र में आता है सा विद्या या विमुक्ते, विद्या हमें वो नहीं चाहिए जो केवल हमें शिक्षा प्रदान करे, नास्तिक बनाए, विदेशों में जाकर के माता पिता के संस्कार को भूल जाएं, देश की संस्कृति को भूल जाएं। हमें विद्या वह चाहिए जो देश में रहें या विदेश में रहें देश की संस्कृति संस्कार माता पिता का सम्मान और हमारे गुरुजनों का आदर सिखाए। मैं कई बार ये कहा करता हूँ हम एजुकेशन तो लेते हैं, आजकल मैं चर्चा करूँगी उग्रवादियों की, बम विस्फोट करते हैं, लोगों को मारते हैं, लोगों को जलाते हैं, जगह जगह उपद्रव करते हैं, जन हत्या करते हैं, स्कूलों में बम विस्फोट करके बालकों की हत्या करते हैं। वो कितने पढ़े लिखे हैं पता है आपको? सब हाई एजुकेटेड है, सारे के सारे हाई एजुकेटेड है, MBA, MCA, MTech, BTech, IIT, IIM किए हुए, जो हमारा आपको बहुत कम शिक्षा मिलती है। लेकिन वो काम क्या करते हैं? बम विस्फोट करके लोगों को मारना, संस्कृति को समाप्त करना, देश में गद्दारी पैदा करना, देश में विस्फोट करके सबको उजाड़ना, संस्कृति उजाड़ना, संस्कार जाना, सब कुछ करते हैं। और याद रखना एक हमारे नरेंद्र मोदी जी भी पढ़े लिखे हैं, योगी जी भी पढ़े लिखे हैं और ये संत महापुरुष जो बैठे हैं ये सब लोग भी पढ़े लिखे, हम लोग भी पढ़ लिख करके आए। मैं पहले सिविल का इंजीनियर हूँ, उसके बाद मैंने वेदांताचार्य, षड्दर्शनाचार्य, फिर मैंने वेदों के ऊपर PhD किया। पढ़े लिखे आप भी पढ़ेंगे, एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन नहीं होगी तो पशु के समान जीवन बिताना पड़ता है, पशु की तरह। एजुकेशन कोई भी हो, मैं कहा करता हूं हर जगह जाकर के, माता पिता कितनी भी मेहनत करें, चाहे दो रोटी कम खा लेना, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाना। अच्छे कपड़े की जगह फटे कपड़े पहन लेना, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाना। समय आ जाए मकान को भी गिरवी रख करके बच्चों को पढ़ाना, और समय मिले तो माताओं से अनुरोध करता हूं सोने चांदी के अपने जितने भी गहने हैं उनको भी गिरवी रख करके बच्चों को पढ़ाए। एजुकेशन नहीं है तो जीवन व्यर्थ है, लेकिन वो एजुकेशन आतंकवादियों की तरह नहीं होनी चाहिए। हम बच्चों को IIT IIM MBA MCA MTech BTech कराते हैं, लेकिन वो आतंकवादी बनकर के जनता को नुकसान पहुंचाते हैं, बच्चों को मारते हैं, संस्कार संस्कृति को नष्ट करते हैं, देश को पथभ्रष्ट करते हैं। और यदि वही संस्कृति संस्कार संस्कृति से संपन्न होगी, एमटेक बीटेक करें, IIT IIM करें, MBA MCA करें, लेकिन वो संस्कार के सहित होगी, तो वही नरेंद्र मोदी और योगी जी जैसे देश पर गौरव करके देश के नाम को, आपके नाम को, मारवाड़ के नाम को विश्व के कोने कोने में पहुंचाएंगे। मारवाड़ में पढ़े लिखे तो लाखों लोग हैं, लेकिन स्वामी महेशानपुरी जी ने जो कार्य करके दिखाया, विश्व के 100 से ऊपर देशों में भ्रमण करके सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है। वो चाहते तो फैक्ट्रियां खोल सकते थे, वो चाहते तो होटल खोल सकते थे, वो चाहते तो और सब कुछ खोल सकते थे, लेकिन खोला क्या, ओम दीप गुरुकुल विद्यालय खुला है, मेडिकल कॉलेज खोले हैं, गौशालाएं खोली हैं, किसके लिए, आप सबके लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए, संस्कार के लिए, इस सनातन का नाम पूरे विश्व में। संत पैसा आएगा तो सनातन के लिए लगाते हैं, विश्व में नाम है ओमदीप गुरुकुल का। कल आप भी कल विदेश में जाएंगे तो आप कहेंगे हम उस ओमदीप गुरुकुल विद्यालय के पढ़े हुए हैं जहां स्वामी महेशान जी महाराज ने बनाया, जिसका नाम वर्ल्ड गिनीज ऑफ बुक में नाम है। आपका एक स्वाभिमान होगा हम वहां पर पढ़े हुए, हम लोग भी कहते हैं कि हम उस स्कूल में पढ़े हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जी का नाम लेते हैं, उन्होंने कहा था कि जिस देश की संस्कृति मजबूत होगी वो देश मजबूत होगा, और जिस देश की संस्कृति कमजोर होती चली जाएगी वो देश मिटने में समय नहीं लगता है। आज हमें अपने देश की संस्कृति संस्कार को विश्व के कोने कोने में पहुंचाना है। वो कब पहुंचेगी, जब हमारे एजुकेशन के साथ साथ संस्कार और संस्कृति होगी। स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज के जीवन में देखिए, संस्कार संस्कृति को लेकर के 100 से ऊपर देशों में जाकर के प्रचार किया है। जार्डन का नाम विश्व के कोने कोने में है, विश्व के कोने कोने में है। और अब वही दायित्व हमारे फूलपुरी जी महाराज, राजेंद्रपुरी जी महाराज, ज्ञानेश्वरपुरी जी महाराज, अवतारपुरी जी महाराज, इन सबके कंधों पर है। ऊंचाई पर पहुंचना तो सरल होता है, लेकिन ऊंचाई पर टिके रहना सबसे कठिन होता है। आज ये संस्था इतनी बड़ी बनी है, कल आप भी गौरव करेंगे। आप कहीं जोधपुर में आएंगे तो हम कहेंगे वो बालक हैं जो स्वामी महेशानपुरी जी महाराज के विद्यालय में पढ़े हुए, विश्व में जिनका नाम है। इस नाम को बरकरार रखना है, नाम को विश्व के कोने कोने में पहुंचाना है। हमें वो संस्कृति नहीं चाहिए जो अमेरिका में एजुकेशन लेकर के अमेरिका में नौकरी करते हैं और माता जी का शरीर शांत होता है तो वहां से चाचा कहते हैं चाचा जी वीडियो कॉलिंग करके देख लेंगे, माताजी की अंतिम क्रिया आप कर दीजिए। ऐसी संस्कृति, ऐसी एजुकेशन हमको नहीं चाहिए। हमको वो संस्कृति चाहिए जो माता पिता से जुड़ाव हो, जिन्होंने फटे कपड़े पहन करके बच्चे को पढ़ाया, भूखे रह करके बच्चे को पढ़ाया, कर्जा लेकर के बच्चे को पढ़ाया, और वो अमेरिका में जाकर के कहते हैं कि हम लाख रुपए खर्च करके नहीं आ सकते। आप अंतिम संस्कार कर दीजिए चाचा जी, वो संस्कृति हमें नहीं चाहिए। हमें तो वो चाहिए जो माता के चरणों में बैठ करके माता का चरण स्पर्श करें, पिताजी के चरणों में बैठ करके पिताजी का चरण स्पर्श

के कोने कोने में निकले, देश के कोने कोने में सनातन धर्म की ध्वजा पताका को फहराएं और गर्व महसूस करें कि स्वामी महेश्वर जी महाराज ने देश के 100 देशों, विश्व के 100 देशों से ऊपर सनातन संघ को पहुंचाया। आप देश के 180-200 के आसपास देश हैं, 202 हैं या 203 हैं इस समय वर्तमान में, उन सब कोनों में जाकर के इस ओम दीप गुरुकुल के नाम को वहां पर पहुंचाएं। आपके लिए साधुवाद, आप धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।

श्री दीप नारायण भगवान की सर्वप्रथम विश्व वंदनीय प्रातः स्मरणीय आराध्य गुरुदेव के चरणारविंद में सत सत नमन। गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम स्वामी महेश्वरानंदपुर जी महाराज के आशीर्वाद से ओम श्री विश्वदीप गुरुकुल स्वामी महेश्वरानंद जी आश्रम शिक्षा एवं शोध संस्थान के अंतर्गत विश्व का एक मात्र ओम आश्रम जो विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम स्वामी महेश्वरानंदपुर जी महाराज की कल्पना थी वो साकार रूप लेने के बाद द्वितीय वर्षगांठ का आयोजन के उपलक्ष में पूज्यपाद ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय शिशुरूपानंद जी महाराज चेतन गिरी जी महाराज मेरे आत्मप्रिय स्वामी ज्ञानेश्वरपुर जी महाराज स्वामी अवतारपुर जी महाराज स्वामी राजेंद्रपुर जी महाराज मनसासेन विराजित संस्था के सभी शुभचिंतक एवं भक्तगण गुरुजन बालक बालिकाएं सभी को पूज्य श्री गुरुदेव का बहुत बहुत आशीर्वाद एवं पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से आप यहाँ पधारे इसके लिए आपको बहुत बहुत बहुत धन्यवाद है। शास्त्र में अनंत हरि कथाएं कहे सुने बहुविधि सब संताएं मुझे पूर्व हमारे गुरुजनों ने या विद्वानों ने जो आपको व्याख्यान दिया आशीर्वाद दिया उद्बोधन दिया मेरा यही निवेदन है कि इसको हृदयंगम करके आत्मसात करके अपने जीवन को आप आगे बढ़ाएं और विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम स्वामी महेश्वरानंदपुर जी महाराज ने जो संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति सभ्यता योग वेदांत पर्यावरण विश्व शांति मानव मात्र के कल्याण हेतु जो कार्य किए हैं उन्हीं के पद चिन्हों पर हम चलें इतना कह करके मेरी वाणी को विराम देता हूं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद। विशेष करके हमारे आत्मप्रिय या आश्रम के सब शुभचिंतक ये सभी स्वामी जी महाराज निवेदन करना चाहूँगा कि स्वामी पूज्य गुरुदेव के ये हमारे परंपरा के सभी शुभचिंतक हैं और कार्यक्रम रात्रि को ही मुझे जानकारी मिली कार्यकर्ताओं की व्यस्तता थी इधर इधर सारे व्यस्त थे और उनका कहना था कि कार्यक्रम जो है शीघ्र करना है ये विलम्ब नहीं होना चाहिए तो रात्रि को भूमिका बना करके आप सभी को हमने शायद जल्दी जल्दी फ़ोन से निवेदन किया होगा ना समाचार हुआ ना पत्रिकाओं के माध्यम से किसी को संदेश मिला है लेकिन आप कुछ ही जो है सूक्ष्म समय में आपने अपना अमूल्य समय निकाल के आप सभी पधारे उसके लिए पुनः बहुत बहुत आभार एवं हार्दिक अभिनंदन। बड़ा अभी चिंता का विषय है कि विश्व गुरु जी इस जो है कार्यक्रम के बीच में उपस्थित नहीं है उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है ऐसे मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था पर फिर भी भगवान के लिए गुरुओं के लिए और समाज के लिए ये चोला पहना है तो आपके बीच खड़ा हूँ और साथ ही साथ में गुरुदेव जहाँ विराज रहे हैं वहाँ से भी आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा दूरभाष के माध्यम से कि उनका संवाद हो पाएगा या नहीं ये नहीं कह सकता लेकिन आशीर्वाद जरूर

आपको जो है दूरभाष के या जो है मोबाइल के माध्यम से हो जाएं, ये कोशिश करता हूं। दो मिनट में आपसे पुनः बहुत बहुत पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और हरिओम। दीप नारायण भगवान की, हिंदू धर्म सम्राट माधवानंदपुर जी महाराज की, विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की, हरिओम।

0: कालम। ओम शांति शांति शांति।
1: विश्वागुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।
0: हरि ओम।

0: When the clouds dispersed, water covered the thirsty land. This was the first verification of the rain harvesting project. The water flowed straight to the lake. The blood of life has been harvested. This is now a reservoir of life, not only for the ashram, but also for many villages in this thirsty region. Now was the right moment to reforest the hill with soils dug out from the lake. The hill will hold a tree. A tree will hold the hill. This is the symbiosis of sustainable development. As much as the rain was a blessing for the desert, it was also a symbol of blessing for the thirsty human soul, a blessing from an encounter with the king of spirituality, Holy Guruji. Sri Madhavanandaji, Swamiji's guru, is both the rain cloud and the sun, an eternally fresh breeze of saintly presence.
1: इसलिए सत्संग करना चाहिए और संतों के दर्शन करके गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। गुरुदेव का स्मरण सर्व पापों को धोके अंतकरण की शुद्धि होती है। अंतकरण शुद्ध करने के लिए प्रभु प्रार्थना और प्रभु का स्मरण और गुरुदेव की कृपा। लास्ट में कहा है गुरु कृपा ही केवलम तो शिष्य के परम मंगलम। जिसके ऊपर केवल गुरुदेव की कृपा होती है तो शिष्य के लोक परलोक में परम आनंद और मंगल हो जाता है। इसीलिए सतत गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। ये भजन गाते हो ये वेदों का सार है। ये तुम्हारे हृदय में वेद का सार यानी ज्ञान प्रकट होता है। साक्षात परमात्मा महाप्रभु जी के मुखारविंद से जो वचन निकले हैं वो वेदों से भी अधिक है। सागर से सहज तार लेते हैं।
0: The following day, there was the festival of the dawn of consciousness, the light of consciousness festival. The day of Guru Purnima has dawned. Guru Purnima is the day of Gurudev's glory and the ancient verses of Guru Gita that are his hymn. All those who seek knowledge need a teacher, and one who seeks spiritual enlightenment finds a guru, a master, one who knows Atma and Paramatma, soul and God. India has kept this spiritual knowledge alive and attainable to all through direct interaction between guru and his disciple. This relationship always assumes the full commitment of the master and the surrender of a disciple.

0: So in our scriptures, in our teachings, in our way of life, there cannot be any other great person than Guru in the world for the disciple and for the all the followers of the yogic way of life.
1: Tamso ma jyotir gamaya. Lead us from the darkness to the light. The first, very first day when the first resonance was awoken in the endless universal consciousness, where the consciousness was dormant, the first was that resonance, the sound that was the Om, and through that sound, the second element, the second tattva, besides the akasha, the fire element was created. And that first very moment is that is was the beginning of the Guru Purnima.
2: गुरु का मतलब है गुमन अंधकार रूमन है प्रकाश अंधकार मेट के अपनी भूल है अज्ञान है वही अंधकार है उसको मेट के प्रकाश देने वाले सत्य ज्ञान देने वाले अज्ञान को हटाने वाले वही सतगुरु होते हैं गुरुदेव को पहचानने वाले बहुत थोड़े भक्त होते हैं गुरुदेव को पहचाने वो स्वयं गुरु रूप परमात्मा रूप हो जाते हैं और गुरुदेव की कृपा होती है आत्मा का ज्ञान हो जाता है लोक परलोक का ज्ञान हो जाता है स्वयं भगवान ने मानव को पवित्र होने के लिए मानव को सुखी होने के लिए ये गुरु पूनम का पर्व बनाया है
3: Everybody wants to personally approach Holy Guruji and Swamiji, to see him and to be seen, to touch him and to be touched. This is a privilege of Guru Bhakta. Bhajans, the spiritual songs and odes to gurus, are sung all night on this night of an unforgettable full

0: do, stay few steps away. You will see immediately your mind will change. This is Mahasamadhi of Devapuriji's Samadhi Sthal. His physical embodiment, that part of his mortal being or his body, Panch Tattva body, is sitting here. When you touch these stones, you have already touched him, his body. And the bhakta knows what it means to touch here.
1: तो सज्जनों, सत्संग करते रहना, महापुरुषों का स्मरण करते रहना, तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो सकता है। गृहस्थ का सन्यासी का कोई कारण नहीं है। साधना करेगा, अमृत पिएगा, वो ही अमर हो जाएगा। उसका नाम अमृत है, अमर होना है, सब पापों से निवृत्त होना है, उस महापुरुषों का नाम ले। गुरु नानक कहते हैं, सतगुरु नाम जहाज चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा से सेवे तो गुरु पार उतरन हार। श्रद्धा करके गुरुदेव की सेवना करे तो गुरुदेव पार उतारे।
2: The desire to be present at a Kumbh Mela took us on a long trip towards the Indian state of Maharashtra. Every 12 years in the town of Nasik, a Kumbh Mela takes place. It is the great spiritual festival of purification and a quest for the nectar of immortality. The 20-hour journey passed in the best of spirits.

0: In this country, wherever Gurudev appears, he is accepted as a source of joy, a source of wisdom.
1: क्योंकि कहा है कि वंदो भारत वर्ष भूमि जहां सतगुरु दर्शन होए आत्म ज्ञान यहीं मिले और देश नहीं कोई। ऋषि मुनि सब संत जन और करे भारत की आस, भारत बिन मिलता नहीं आत्म ब्रह्म प्रकाश। श्री पूज्य भगवान दीप नारायण दीना ब्रह्म उपदेश, माधवानंद आनंद भया पाया भारत देश। तो वी नीड ऑल टू हेल्प अवर सेल्फ टू प्रोटेक्ट द कंट्री। We need to protect the Sanatan Dharma, and we should and we must protect all religions. No religion should be discriminated. No any culture should be discriminated. No any country should be discriminated. We have to respect them as they are.
0: Finally, the day of ceremonial bathing has come.

0: परमार्थ जिनका धर्म है, संकल्प अधर्म विनाश है। धर्म के अवतार की जय जय महेश्वरानंद की, धर्म के अवतार की जय जय महेश्वरानंद की।
1: बोलिए महेश्वरानंद महाराज की।
2: After the dynamic visit to Maharashtra, here we are again at the Jadan Ashram, in a place of peace, a peace needed for the depth of working with oneself, for the depth

0: बजाए तलवार बजाए।
1: यू कैन ट्राई मैनी थिंग्स अनलेस यू हैव नॉट कंट्रोल्ड चित्त वृत्तिस एंड दैट कैन ओनली बी थ्रू गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम। देयरफॉर गुरुदेव बिना कार्य नाय।

0: Even though physically absent, Guruji was inevitably the centre of all attention. A photobiography of Guruji's life was solemnly presented.
1: Swami ji, Mahatanand ji, Maharaj sahab to aaj hamare beech mein nahi hai kyunki wo swasth labh kar rahe hain jaisa bataya gaya. Par unka sandesh hamare beech mein hai, aapke beech mein hai. Lambe samay tak kaise unhone wo kaam kiye jisse ki aatmik sukh mile, atma ko shanti mile, sadbhav ka vatavaran kayam ho. Ek lamba jeevan unhone bitaya aur kis prakar se ve समाज को, देश को, दुनिया को संदेश देते गए. ये सौभाग्य है पाली जिले का, देशुरी तहसील का और निप्पल गांव का. जब वो पैदा हुए, उन्होंने महान संत स्वामी दीपनाथ जी की सानिध्य में रह के संकल्प किया और वही संकल्प संदेश के रूप में आज सबके सामने है.
2: टुडे विद अस large number of our foreign friends are also here. I would like to acknowledge their dedication to this institution. I welcome on behalf of all farmers here that looking to your devotion, it's really appreciable and it is amazing. It is beyond our thought and thinking.
3: So, बाबूजी मन से यहाँ हैं, तन से वहाँ हैं. गुरुजी हमेशा यही कहते हैं, नशा पत्ता छोड़ो, जाति पाति का भेदभाव छोड़ो, सर्वधर्म का सम्मान करो, जिससे कि विश्व शांति बनी रहे, प्राणी मात्र की रक्षा हो और मानव का भी कल्याण हो. बोल श्री दीप नारायण भगवान की. धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी गुरुदेव की.
0: Today, our stay in India has come to an end. The heart of India is an ashram. An ashram is the home of the soul, and the soul of that home is a Gurudev. His word comes from an eternity and lasts for an eternity.
4: God is endless and His glory is endless. He is beyond our imagination, beyond the borders and beyond everything.

0: बोले श्री देव प्रेम भगवान की जय श्री देवेश्वर महादेव की जय श्री स्वामी माधवानंदजी भगवान की जय
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर श्री स्वामी महेश्वरानंदजी गुरुदेव की जय श्री पारहंस योग

ओली श्रीदीप नरयाम भगवान की जय। परहंस योगानंद जी गुरुदेव की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय हो।

0: श्री दीप नारायण
1: भगवान की जय।
0: श्री अलकापुरुष महादेव
1: की जय।
0: श्री देवापुरुष महादेव की जय। श्री माधवानंद जी भगवान की जय। श्री परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी विश्व गुरुदेव जी की जय।

ओम श्री दीपनारायण भगवान की जय। श्री अलकपुरुष महादेव की जय। श्री देवपुरुष महादेव की जय। श्री माधवानंद जी भगवान की जय। श्री परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी विश्व गुरुदेव जी।

0: ओम श्री नारायण भगवान
1: की जय।
0: श्याला पुरुषा महादेव
1: की जय।
0: श्री देवा पुरुषा महादेव
1: की जय।
0: श्री माधवानंद जी भगवान की जय। श्री परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी सत गुरुदेव जी की जय। ओम श्री आला कपूरी जी सदा पिता परम्परा की जय।

प्रदीप नारायण भगवान का जय, गुरु नानक जी महाराजा की जय, प्रदीप नारायण भगवान की जय।

दीप नारायण भगवान की जय। श्री माधव जी महाराज की जय। परम स्वामी महाश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।